0: दशमपः अनुतुनाय दशमहत लखंड रेडियो आईटीएन सभे श्रीलंकिया हंड
1: विलाव पासुरेखाई
2: विलाव ओपवेत किन आवे
3: दोतराये पेरलीकरण एनएलबी मेगा पावर तेवंत मेगा सुपर टैग के अमतरव

नाव सदैकाय वेनाट विस्याटाय वलाव बिंदुवाय हताय बिंदुवाय तुनाय अनुतुनाय पहाय अनुतुनाय हातट मैसेज का केवन पुलवा

0: में सलमान खान विनोवन गाने कमल का
1: आई लव यू ऑल। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है,